0: and 11. So let's enjoy Dumado Dum. Mit jaye gum Dumado Dum by Anushka Machanda.
1: फिर दिख रहा है आज आंख सेक रहा है कल हाथ सेकेगा आज ढील